महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंथरा चाल चलती रही।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हमाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 12। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने। निर्देशन भारत सुपोरी।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। पेश है प्रोग्राम पहलू और गीत। सभी सुनने वालों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। आज के पहलू और गीत प्रोग्राम का शीर्षक है आंखें। आंखें हैं जो दिल की जुबान बोलती हैं, आंखें हैं जो प्यार की गहराई में डूबती हैं, आंखें हैं जो जीवन की सच्चाई दिखाती हैं, और आंखें ही हैं जो दिल को जीतती हैं।

दिल की दुनिया में अपने ख्वाबों का जहां, ख्वाबों की दुनिया में अपने दिल का घर, जीवन की राह में अपने पैरों की आहट, दिल की धड़कन में अपने ख्वाबों की सांस।

अखियों में तेरी छुपी हुई बातें, दिल की गहराई में तेरी छुपी हुई सांसें, अखियों में तेरी देखी हुई ख्वाबों की दुनिया, दिल की धड़कन में तेरी छुपी हुई बातें।

आंखें हैं जो दिल की गहराई में बसती है, आंखें हैं जो प्यार की गहराई में डूबती है, आंखें हैं जो जीवन की खूबसूरती दिखाती है, आंखें ही हैं जो दिल को जीतती है।

आँखों की तारीफ कैसे करें हम, आँखों की गहराई में खो जाना है, आँखों के प्यार में जीना है, आँखों के प्यार में खो जाना है।

अखियों में तेरी जादू की झलक, दिल की गहराई में तेरी प्यार की बात, अखियों में तेरी देखी हुई दुनिया, दिल की धड़कन में तेरी छुपी हुई सांसें।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 12, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगा हार्ट्स रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: पहले भी बरखा थी।
2: थी तो क्या हुआ,
1: पर ऐसी कहाँ थी। अच्छा।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। दोस्तों, लघु कथाओं की श्रृंखला में आज मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं श्री कुणाल शर्मा जी द्वारा लिखित एक लघु कथा जिसका शीर्षक है कुर्बानी। विद्यालय में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा था। मुख्य अतिथि के भाषण के पश्चात सभी प्रतिभागी बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए लाइनबद्ध कर रहे थे। एक एक करके सभी को मीठे दूध की बोतलें बांटी जा रही थी। भाई, कोई बच्चा दोबारा लेने मत आए और हाँ, लाइन मत तोड़ो, अध्यापक का हिदायत भरा स्वर हॉल में गूंजा। और एक बच्चा सभी वर्दीधारी बच्चों की पंक्ति में अलग ही चमक रहा था। गहरे लाल रंग की कमीज घुटनों को छू रही थी और मैली कुचैली सी पेंट और पांव में बेमेल काले जूते। पहले अध्यापक उसको दूध की बोतल दे चुके थे। जाहिर था वो फिर से लाइन में लगा था। अरे, अभी तो दूध की बोतल लेकर गया था, फिर से लाइन में लग गया। चल भाग यहां से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा, अध्यापक ने कड़क लहजे में उसे कहा। वो सहमा हुआ सा हाल से बाहर निकल गया। रिफ्रेशमेंट बांटकर एडजस्टमेंट पीरियड में 9वीं कक्षा में जब अध्यापक गए तो उनकी नजर फिर से उस बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा पैंट की जेब में

कुछ डाल रहा था। क्यों बे, तेरी वर्दी कहाँ है और ये जेब में क्या डाल रखा है? बड़ी तलखी से अध्यापक ने उसको पूछा। कुछ नहीं सर, वो घबराते हुए बोला। निकाल बाहर, जेब में क्या है, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा। उसने सहमते हुए जेब से दूध की बोतल निकाली ही थी कि अध्यापक उस पर बरस पड़ा। तू हेरा फेरी करके दूसरी बोतल ले ही आया ना? नहीं सर, ये मेरे वाली ही है। झूठ बोलता है, तेरे वाली है तो अभी तक पी क्यों नहीं? सर, आज मेरा जन्मदिन है, ये बोतल माँ को पिलाऊंगा। जब से पापा गए हैं ना, माँ ने कभी दूध नहीं पिया। उसका ये जवाब सुनकर अध्यापक के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, अगर आप भी कहानी लिखते हैं और आपकी कहानी भी मौलिक है तो आप अपनी कहानी हमें भेजिए। हम उस कहानी का स्तर देखने के पश्चात यदि वह प्रसारण के योग्य होगी तो अवश्य उसको आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें बरसों बाद।

दिल तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे। इस दिल का

रहना, अपनी रवानी और अपना रास्ता बदल रहे हैं। इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपुरी, लेके आया हूं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, जहां बात करेंगे दोस्ती की, समर्पण की। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों को साझा करना। दोस्त वो है, एकदम वो भी ऐसे ही होता है जैसे हम हैं, और हमें बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चे दोस्त हमारे अनमोल रत्न होते हैं जो हमारे जीवन को चमकाते हैं। एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ रहता है, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किलें आएं।

दोस्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। जब दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब भी जिंदगी में सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है तो हमारे अनमोल दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और अपने अनुभव साझा कर एक यादगार बनाते हैं जिसको हम जीवन भर संजो के रखते हैं।

ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका दोस्त ना हो, जो दोस्त की अहमियत ना जानता हो। हमारी जिंदगी में ज्यादा दोस्त ना हो पर कम से कम एक दोस्त जरूर होता है, और उनके साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता। खासकर बचपन की दोस्ती तो बहुत गहरी होती है, जिनकी यादें सदा के लिए मन में बस जाती हैं।

ऐसा नहीं कि मित्रता बनावटी नहीं होती, पर जहां बनावटी मित्रता की जाती है वो स्वार्थ से भरी होती है। कोई भी संकट आए तो सच्चा मित्र ही उस मुश्किल घड़ी में साथ देता है, सारे कष्टों को दूर करता है। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अपने एक सुंदर दोहे में कहा है, आगे के मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित आहे गति संभाई, उस कुमित्र परिहे रहनी बलाई। अर्थात जो आपके सामने मीठा मीठा बोलता है और मन में बुराई रखता है, आपका बुरा चाहता है, तथा जिसका मन सांप के चाल सम्मान टेढ़ा है, ऐसे मित्रों को छोड़ देने में ही भलाई है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 भारत सोपुरी के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, आइए इस चर्चा के साथ करते हैं समापन इस कार्यक्रम का। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है और मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। मित्र सबके लिए निसंदेह रूप से एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाला प्रदान करता है। एक सच्चे दोस्त होने से बेहतर कुछ भी नहीं, जिसके साथ आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और कभी भी जरूरत होने पर उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को अर्थ देता है और हमारी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना देता है। इसी अच्छे विचार के साथ करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। आप अपना फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जल्द और किसी प्रोग्राम में भेंट करेंगे, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2। एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। प्रस्तुत करेंगे राहुल अलियान, स्क्रिप्ट निया जैन का, एडिट निर्देशन भारत सोपोरी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7 और आज हमने चयन किया है फिल्म चलते का नाम गाड़ी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। आज हम आपको सुनाएंगे फिल्मी किस्से फिल्म चलते का नाम गाड़ी का, जो हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाई एक साथ नजर आए। ऐसा बहुत कम फिल्मों में हुआ है। इस फिल्म में तीनों भाइयों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म में मधुबाला ने भी अहम भूमिका अदा की है। फिल्म को सत्यन बोस ने निर्देशित किया था और इसका संगीत SD बर्मन ने दिया था। आप बने रहे हमारे साथ, आपको इस फिल्म के और भी फिल्मी किस्से सुनाएंगे और इसी फिल्म के मनमोहक गीत भी।
1: हम थे वो थी हम थे

लड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो

ने खींचा आहा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा हा।

0: अन्य अन्य प्यार हो गया।
1: इस फिल्म का उद्देश्य है कि जो काम करता है वह ठीक है, चाहे वह कैसे भी काम करे। यह संदर्भ संभवतः तीनों भाइयों की पुरानी घिसी पीटी कार की ओर है, जो ज्यादातर खराब हो चुकी है फिर भी काम करती है। फिल्म के दूसरे गाने बाबू समझो इशारे के शूट के दौरान कैमरा पर्सन आलोक दास गुप्ता की कार से टक्कर हो गई थी। यही नहीं, एक गाने के शूट के दौरान आलोक तालाब में गिर गए थे और डूबने ही वाले थे, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था।

इस फिल्म के साथ ही इसके गाने भी हिट हुए थे और पांच रुपया बारह आना तो आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी कहानी है? दरअसल किशोर कुमार पर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से पांच रुपया बारह आना का उधार था, जिसको लेकर वो मस्ती में गाते थे। इस बारे में अमित कुमार ने रिवील किया था।

बम बमक बम बमक बम बमक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में ला

इसके साथ ही मधुबाला की 1958 की लगातार चौथी बड़ी हिट फिल्म बन गई, जिसे 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शीर्ष महिला सितारे के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। फिल्म के एक गाने में मधुबाला को विलेन सज्जन प्रपोज करता है, लेकिन मधुबाला इसे कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि उनके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं। हालांकि निर्देशक बोस के समझाने के बाद आखिर में मधुबाला मान गई। इसी फिल्म के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार की नजदीकियां भी बढ़ी और दोनों की ये नजदीकियां हाल कैसा है जनाब का के शूट के दौरान हुई और बाद में उन्होंने शादी कर ली।

0: कहा जाता है इस फिल्म का निर्देशन पहले बंगाली डायरेक्टर कमाल मजूमदार करने वाले थे, लेकिन मुहूर्त के 3 घंटे पहले ही उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया और वजह बताई कि वो तीनों गांगुली ब्रदर्स को लेकर हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब कमाल मजूमदार ने फिल्म से इनकार कर दिया तो किशोर कुमार सत्यन बोस के पास गए और बात बन गई। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार और अनूप कुमार को किशोर कुमार ने ही मनाया था। सिर्फ यही नहीं, फिल्म के लिए पिता की कार का कंसेप्ट भी उन्होंने ही लिखा था।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

0: फिल्म शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने सेट पर खूब मस्ती की और कई बार सीन में बदलाव भी किए जो बाद में फिल्म में रखे गए। ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई थी। इस फिल्म को लेकर किशोर कुमार को लगता था कि ये फ्लॉप हो जाएगी। दरअसल किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी आय कम रहे और इनकम टैक्स में घाटा दिखा सके, लेकिन इसकी कॉमेडी, संगीत और कहानी से इसे सुपरहिट बना दिया गया। किशोर कुमार द्वारा फ्लॉप होने की उम्मीद के साथ चलती का नाम गाड़ी ने बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो अंततः बोस और गांगुली भाइयों का सबसे सफल काम बन गया और उस साल की दूसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बाद में किशोर कुमार ने इस फिल्म के सभी अधिकार अपने सचिव अनूप शर्मा को दे दिए।
1: अरे अरे अरे रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाए

चलती का नाम गाड़ी के बारे में जिस बात का अक्सर जिक्र किया जाता वह है महिला का चित्रण। मधुबाला का किरदार एक साधारण रूप से आजाद महिला का है जो अपनी कार चलाती है और पुरुष प्रधान दुनिया में अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए अटल है। अनूप कुमार की प्रेमिका पेट्रोल पंप चलाती है। अशोक कुमार की पूर्व प्रेमिका की जबरन शादी कर दी गई थी, लेकिन जब वे 10 साल बाद मिलते हैं तो वे उसे वापस लेने के बारे में दोबारा नहीं सोचता। 1950 के दशक या वास्तव में 1960 या 1970 के दशक की किसी अन्य हिंदी फिल्म के बारे में नहीं सोच सकता जिसमें महिला को पुरुष के समान माना गया हो और जिसमें सभी पुरुष नायक कम अंतरराष्ट्रवादी हो।

बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, और हम थे वो थे और समा रंगीन, जैसे गाने उस समय बहुत हिट हुए थे और आज भी लोकप्रिय हैं। और साथ ही यह फिल्म चलती का नाम गाड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म है, जिसने अपनी छवि लोगों के मन में हमेशा के लिए छोड़ दी है।

और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त राहुल अलियान को दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नई फिल्म और फिल्मी किस्सों के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। आज की फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी। रिकॉर्ड व प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। स्क्रिप्ट तैयार किया निया जैन ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखा।

शम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान ली।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
1: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

0: मगर।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो
1: देखो दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio vitasta hamsafar zindagi ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो
2: ये रातें ये मौसम

नब्बे आशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: नब्बे आशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: अजय सुना सरदारा की आल है।

0: कुमार, अरे कम्बक गाड़ी को भी यही पंक्चर हो रहा था। हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा,
1: इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह, अरे वाह, अरे वाह।

फिल्म गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

बस जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजुमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ढलते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान हैं कश्मीरी फोक सूफी गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती नीरजा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपुरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज कार्यक्रम गुप्तगु का एक और अंक। गायन एक सामान्य शब्द है जो संगीत गाने की क्रिया को दर्शाता है, जबकि सूफी गायन एक विशेष प्रकार का भक्ति संगीत है जो सूफी संतों के आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। सूफी गायन में सूफियों की रहस्यात्मक भावनाओं, प्रेम, विरह और भक्ति को व्यक्त किया जाता है। कवाली सूफी संगीत का एक रूप है, लेकिन इसमें गजल, तराना और धमार जैसे अन्य रूप भी शामिल होते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5 समर्पित है उन सुरों को जो दिल को छूते हैं, आत्मा को मंत्र मुग्ध करते हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर की गायिका, एक सूफी फनकार और खास तौर पर ये आवाज जो कश्मीर घाटी की सरजमीन से उठकर देश और दुनिया के दिलों तक पहुंची है। स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान का। स्वागत है श्रीमती नीरजा पंडित जी, आपका आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आपने वितस्ता रेडियो पे मुझे आमंत्रित किया है और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सुरमई यात्रा की। सबसे पहले नीरजा जी, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में आपके आने से। आज हमारा ये स्टूडियो पावन हो गया है।
1: नहीं, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज मौका मिला है आपके इस पवित्र जगह पे, आपके स्टूडियो में आने का एक अवसर मिला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: मैं बेसिकली कश्मीर से हूं, नीरजा पंडित के नाम से जानी जाती हूं। पहले मैं नीरजा मुंशी थी शादी से पहले, और कश्मीर में थी। कश्मीर में एक छोटी सी जगह है श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, जहाँ की हमारी शिव योगिनी ललेश्वरी है, उसी जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की हवा खातून भी है
0: जी।
1: और पामपुर उस जगह का नाम है, और पामपुर बहुत पॉपुलर है, फेमस है काफी चीजों के लिए, जिसमें केसर उगता है
0: जी।
1: तो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सब जानते हैं, तो मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ।
0: सभी श्रोताओं को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेडियो वितस्ता हमेशा कश्मीर के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसका जो वजूद है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने श्रोताओं को कश्मीर की उन हसीन वादियों से और वहाँ की जो खास बातें हैं उनके साथ आपको जोड़ूं, और आप हमारे साथ जुड़े और हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी के हम सफर बन पाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पहले मेहमान है वो गायक जिन्होंने मंचों, फिल्मों और एल्बम्स में अपनी आवाज से जादू बिखेरा है। सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि संगीत में आपका सफर कैसे शुरू हुआ।
1: एक्चुअली मुझे संगीत का जो एक हेरिटेज होती है ना, वो मुझे मेरी माँ से मिली है
0: जी।
1: और उनको उनकी माँ से मिली थी
0: जी।
1: तो मेरी माँ जब कश्मीर में फंक्शंस में गाया करती थी, फैमिली फंक्शंस में, मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको देखती थी और मैं भी इंस्पायर होती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत छोटी थी, और मुझे वो आकर्षण होता था उनके संगीत की तरफ, और मैं उनके साथ बैठ के उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी, उन गानों को गाने की कोशिश करती थी। हमारे कश्मीरी फोक म्यूजिक में तुम्बक नर एक इंस्ट्रूमेंट है जो शादियों में बजता है, जैसे ढोलक है पंजाबी में, तो वैसे वो तुम्बक नर मैं कोशिश करती थी बजाने की। छोटी सी थी बट एक जिद मेरी थी, वो मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं मम्मी के बगल में बैठ के उन गानों को रिसाइट करने की कोशिश करती थी और गाती भी थी। फिर छोटे से ही शुरुआत हो गई थी मेरी, और फिर स्कूल के फंक्शंस में गाना गाना, पार्टिसिपेट करना, और उसमें ये था कि कश्मीर रेडियो से बजते थे बहुत अच्छे अच्छे गाने उन दिनों, लाइट म्यूजिक, फोक म्यूजिक तो था ही था, लाइट म्यूजिक में हमारे वरिष्ठ जो गायक थे, जिसमें कैलाश मेहरा साधु जी हमारे, वो सारे मेरे गुरु समान हैं, और शमीमा देव जी थी, आरती तिकू जी थी, कई सारे सिंगर्स थे जो गाया करते थे, और उन गानों को भी मैं सुन सुन के रिसाइट करती थी और फंक्शंस में गाती थी स्कूल के। वहां से मुझे एनकरेजमेंट मिलती रही और सब बोलते थे तो बिल्कुल वैसे ही गाती है। और बचपन में एक ग्रेस्पिंग पावर भी होता है
0: जी।
1: तो उन गानों को मैं एग्जैक्टली उसी ट्यून में उसी तर्ज में गाने की कोशिश करती थी और वो अच्छा लगता था सबको। और फिर एनकरेजमेंट मिलती रही टीचर्स से कि नहीं तुम सब्जेक्ट ले लो, बिकॉज कश्मीर में सब्जेक्ट नहीं था स्कूल लेवल पे। तो जब 10th पास किया फिर मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया कॉलेज में और अपने गुरुजी से पंडित शंभुनाथ सोपरी जी जो कश्मीर के प्रख्यात म्यूजिशियंस में से रहे हैं, ही इज द मास्टर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर कॉलेजेस में, कॉलेज लेवल पे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने सब्जेक्ट लिया और उनसे सीखना भी शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ना संगीत की। बस वहाँ से एक सीखने का सफर शुरू हो गया, फिर साथ साथ रेडियो टीवी वो सब भी
0: मतलब साथ साथ चलता
1: साथ
0: रहा।
1: साथ चलता रहा।
0: क्या मैं मानूं आपको ये विरासत में संगीत और जो संगीत के साथ आपकी जिंदगी चल रही है, जो आपकी संगीत की यात्रा है
1: जी,
0: तो क्या हम माने कि ये आपको विरासत में मिली है?
1: विरासत में तो मिली थी, हमारी फैमिली में सब गाते हैं, सबको भगवान ने वो वरदान दिया है गाने का,
0: सरस्वती माँ का आशीर्वाद।
1: पर मुझे एक जब मैं वही मैं आपको बोल रही थी कि मैं गाने जब गाती थी स्कूल में रेडियो के गाने जो बजते थे उसमें पंडित भजन सोपुरी जी की नई नई कंपोजिशंस और बहुत मुश्किल कंपोजिशंस, और उसको मैं गा देती थी इनोसेंस में ही गा देती थी। बेशक उस वक्त बोल भी आधे समझ में नहीं आते थे बिकॉज पोइट्री एक पोइट्री होती है
0: जी जी।
1: बट बचपन में वो मैं ट्यून को पकड़ती थी, उन कंपोजिशंस को मुझे कुछ अट्रैक्शन मिलती थी और मुझे लगता था मैं भी कभी गाऊं रेडियो पे, मैं भी कभी दूरदर्शन में गाना गाऊंगी। ये एक वहीं से मुझे एक स्पार्क जैसी भगवान की तरफ से था कि मुझे कुछ करना है म्यूजिक में। तो भगवान की कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद रहा और मैंने कॉलेज टाइम से ही फिर शुरू किया सीखना क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड सब्जेक्ट भी लिया और प्लस रेडियो में ऑडिशन करके शुरू किया मैंने एक प्रोफेशनल सिंगिंग, प्रोफेशनल सिंगिंग जी, जी जी जी। तो बहुत हार्ड वर्क होती है तभी जब हम इसमें पूरा डिवोट करेंगे अपने टाइम को। विरासत तो थी बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट और उसमें हार्ड वर्क।
0: आपने अपने इस सफर को खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक बनाया है।
1: फिर मुझे ये भी नहीं पता कहाँ तक पहुँची हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है, लिटरली लगता है जो मुझे पाना चाहिए था। बट ठीक है, डेस्टिनी में जितना लिखा होता है वो मिलता है हमको
0: जी।
1: ये था कि रेडियो टीवी के करने से काफी भजन जी के अंडर हम काम करते थे, भजन सोपोरी जी जो मेरे गुरुजी भी है, मेरे गुरु भाई भी है, वो सब जानते हैं उनको, इंटरनेशनल वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट रहे हैं वो संगीत के, संतूर माएस्ट्रो। एंड देन कश्मीरी फोक म्यूजिक को उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन लाया और उन धुनों को लेके मैं इंस्पायर होती थी। उनका कनेक्शन मेरे साथ है, वाई बिकॉज मैं उन्हीं धुनों को सुन सुन के इंस्पायर होती रही और मैं अट्रैक्ट होती रही टुवर्ड्स दिस लाइट म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, जो मैं फिर शुरुआत भी हो गई रेडियो कश्मीर से और दूरदर्शन से।
0: हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे श्रोताओं से आज मुखातिब है। आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे और श्रोताओं की जो जिज्ञासा है, उम्मीद है कि उन सारे सवालों के जवाब हम नीरजा जी से लेंगे। पर मैं चाहूंगा कि हमारी श्रोता इंतजार कर रहे होंगे आपके कंठ से सुनने के लिए।
1: जरूर जरूर
0: जी।
1: मैं एक गुरुस्तुति से ही शुरू करूंगी, शुरुआत उन्हीं से मैं करना चाहूंगी
0: जी, जी।
1: एक छोटी सी सूफी भजन से पॉपुलर भजन है ये, नुसरत फतेह अली जी ने गाया है, तो मेरा जबरदस्त फेवरेट भजन है ये सूफी भजन।

0: बहुत खूब निर्जा जी, आपने अभी कश्मीर की बात की, कश्मीर के बारे में आपने बोला, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी प्रांत में रह रहे हो, हम सब के लिए माँ बोली कितनी महत्वपूर्ण है? क्या हमारी पहचान माँ बोली से ही हो सकती है? हमारे लिए माँ बोली को बचा के रखना, उसका संरक्षण करना कितना जरूरी है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो किसी प्रांत की बात हो।
1: भाषा एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी आपको अपने रीजन का कोई दिखता है, जब तक आप उसको अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो मेरे प्रांत का है या कहाँ का है। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं, किसी भी जगह पे हो हम, तो एक अलग ही अपनापन लगता है
0: जी।
1: तो ये भाषा का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है
0: जी।
1: भाषा नहीं तो अंग्रेजी सब बोलते हैं, तो फिर हमारे में और दूसरी जगह से होंगे या प्रांत से होंगे, जो अपनापन हमारी भाषा में बात करने से होता है, तो वो हमको किसी और अंग्रेजी में, नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं आएगा
0: जी।
1: वो तो सबको करना ही पड़ता है, बिकॉज काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो सब तो करना ही पड़ेगा काम चलाने के लिए। बट जब हमको अपनेपन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा से ही हमारी पहचान है। और कश्मीर से निकलने के बाद मैं मुंबई चली गई मेरी शादी के बाद
0: जी।
1: तो हमारे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड मेरा, जो मैंने कश्मीर में रेडियो गाने गाए थे, टीवी पे गाने गाए थे,
0: सब कुछ छूट गया था,
1: कश्मीर में ही छूट गया था। और उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि संगीत मैं कर ही रही थी, कश्मीरी म्यूजिक तो मेरा था ही वहाँ पे, तो उसको मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि छूट गया और आगे की जनरेशन तक कैसे हमारी ये मातृभाषा आगे जाएगी
0: जी।
1: तो मुझे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा माध्यम लगा, म्यूजिक के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं भाषा को। तो मैंने एल्बम्स बनाने शुरू किए, उसको री रिकॉर्ड किए, मैंने जो कश्मीर के पॉपुलर गाने थे, जो मैंने भी गाए थे और जो वहाँ के बाकी सिंगर्स ने भी गाए थे, चूंकि रिकॉर्ड कुछ था नहीं अपने पास, तो उसको रिवाइव करने के लिए मैंने काफी मेहनत की, एफर्ट लगाया और उसको रिकॉर्ड किया। और तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर सब जगह जगह मैंने भेजी वो सीडीज, जहाँ जहाँ हमारी कश्मीरी बरादरी थी उनको भेजा मैंने, उनको दिए मैंने सुनने के लिए। और जो बच्चे पैदा हुए थे, जो बड़े हो रहे थे, तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हम कश्मीरी गाने चलाते रहेंगे घरों में, हमारे जो रीजनल गाने हैं, तो हमारे बच्चों के कानों तक पहुंचती है चीजें सुनने को, फिर उनको फिर वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके थ्रू उनकी भाषा उनको समझ में आने लगेगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल अपनी ही दे दूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने पहले कहा कि मेरे को भाषा का कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत छोटी थी, मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड से ही इनफैक्ट शुरू किया था। जो मैं गाने गाती थी, शमीमा आजाद जी के, कैलाश मेहरा साधु जी के, आरती तिक्कू जी के, मुझे सिर्फ ट्यून पकड़ती थी, भाषा मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली इसको करने लगी, धीरे धीरे धीरे धीरे, जब मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया, मैं 11th में थी, छोटी थी, क्लासिकल तो सीख ही रही थी, मगर ये पोइट्री मुझे किसी ने सिखाई नहीं, ये मुझे अपने आप ही फिर इसकी समझ आ गई करते करते करते करते, जब मैंने गाने गाने शुरू किए और मेरी मैच्योरिटी लेवल तो धीरे धीरे फिर इंसान की आई जाती है, और मैंने समझा कि नहीं, ये तो फिर करते रहने से, सुनते रहने से, और जितना इसके साथ जुड़े रहो इन गानों के साथ, वो समझ आ गई मुझे। तो मुझे लगा कि ये म्यूजिक के फॉर्मेट में बच्चे सुनेंगे गाने, कश्मीरी गाने चलते रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरा बेटा है, वो भी बचपन से मेरे साथ करता रहा है, सीखता रहा है, सुनता रहा है, और मेरे ये एल्बम्स पे काम उसने भी किया जब वो बड़ा हो रहा था
0: जी।
1: सिंस उसका म्यूजिक ही उसने अडॉप्ट किया है, म्यूजिक में ही है वो। बट उसको ये बात, उन दोनों बच्चों को, मेरी डॉटर भी है, ये गाने सुनते सुनते उनको कश्मीरी भाषा मैक्सिमम आ गई, जबकि हम घर में भाषा बोलते हैं कश्मीरी, बट म्यूजिक के थ्रू उनको ज्यादा हेल्प हो गई
0: जी।
1: तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारा संगीत, अगर हम कश्मीरी गाने गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे रेडियो पे, उसको एडॉप्ट करेंगे, तो हमारी भाषा जल्दी पकड़ सकते हैं बच्चे।
0: नीरज जी, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है और अलग अलग संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, पर अभी मैं इसी बात पर रहना चाहूंगा, कश्मीरी भाषा है वो हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम उस कश्मीरी भाषा को समझ पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ललदेद की बात करूंगा, क्योंकि उनके जितने भी वाक है वो कश्मीरी में ही है
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप बताएं।
1: जी, हमारे कश्मीर में तो काफी वरिष्ठ सूफी सेंट्स रहे हैं और बहुत जबरदस्त लेवल के ऊंची अवस्था में रहने वाले सेंट्स रहे हैं, पीरवर रेशवर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे गुप्त संत भी थे जो एकदम हाई लेवल के, उसमें से ललेश्वरी भी थी वन ऑफ देम, और वो शिव योगिनी थी, उनको कहा जाता था ललेश्वरी माता। तो मैं उसी जगह को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से उनका वो सब सुना है, मैंने देखा तो नहीं है बट सुनते हुए, फिर उनके वाक सुनते हुए, सुने भी हैं, सीखे भी हैं, तो काफी सारे वहाँ के हैं सूफी पोइट्स हैं और संत परंपरा से जुड़े भी काफी हमारे संत हैं। तो मैंने कई गाए भी हैं, और अभी आपने ललेश्वरी की बात की है तो मैं ललेश्वरी का वाक आपको सुनाते हुए फिर एक सूफी गाना ही सुनाऊंगी। सूफी मतलब फिलोसोफिकल पोइट्री है जो डोलवाल साहब का है। डोलवाल साहब बहुत बड़े शायर थे, कंपोजर थे, सिंगर थे उस जमाने के, तो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है मेरे एक एल्बम में, उसका नाम है रिश्वर
0: जी।
1: तो उसमें सूफियों के ही गाने हैं उस एल्बम में, तो ये भी एक गाना है। मैं ललवाक से शुरू करूंगी।

0: मुझे भी उस बचपन के दौर में लिया और उस कश्मीर की वादियों में, उन गलियों में आपने मुझे पहुंचाए इस गीत के जरिए जो आपने अभी गाया मेरी और आपकी माँ बोली में। श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि माँ बोली हमारी पहचान है, हमें अपनी माँ बोली को बचा के रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, क्योंकि हमारी पहचान हमारी मातृबोली से ही होती है। जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है, और चाहे हम दुनिया के सभी भाषाएं बोलें पर हमारी पहचान हमारी मातृभाषा होती है। इस चर्चा को आगे ले जाते हैं और बहुत से हमने बातें करनी है नीरजा पंडित जी के साथ। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने अलग अलग भाषाओं में गीत गाए हैं
1: जी।
0: तो जो हमारा प्रांत है इसमें पंजाबी बहुत ज्यादा बोली जाती है और हरियाणवी के साथ साथ पंजाबी गीत गाए और सुने जाते हैं
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर के बाद आप एक पंजाबी गीत, कोई सा भी आपके मन का हो, वो हमारे श्रोताओं को सुनाए।
1: जरूर जरूर
0: नीरजा जी, आपसे अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि सूफी संगीत का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: सूफी मतलब सूफी संगीत तो अभी काफी प्रचलित है। मैं तो ये कहूंगी कि संत परंपरा से हम जुड़े हुए रहे हैं हमेशा। हमारी जितनी भी पोएट्री है वो सब संतों की वाणी है, वो सब सूफियों की वाणी है। तो वही गा गा के वही हम यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, उनको ही, उन्हीं कलामों को गा गा के, तो वो हमारे जीन्स में ही है। सूफियाना म्यूजिक और सूफी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक नहीं होता है लिरिकली, मतलब वो पोइट्री जो वहाँ की है
0: जी।
1: ये दुनिया में मुझे लगता है, मैं कई जगह जाती रही हूँ, बाहर इंटरनेशनल शोज के लिए गई हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी कश्मीरी पोइट्री इतनी रिच है, हमारी हेरिटेज इतनी रिच है, जो हमारी वहाँ की परंपरा है रिचेस्ट मुझे लगती है हमारी जो भाषा है, और जितने भी हमारे कलाम हैं कश्मीरी, चाहे वो सूफियों के हैं चाहे वो संतों के हैं, तो मैं उस परंपरा को बिलोंग करती हूँ। ये मेरी भाग्य की बात है कि मैं कश्मीर से जुड़ी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो हमारे खून में ही दौड़ता है वो सब पोइट्री जो हमारी है। जैसे मैंने अभी ललेश्वरी जी की बात करी, एक मिस्टिक पोइट्री है वो, तो आम भाषा नहीं है, तो काफी इनको गाते गाते आपको एक अलग ही रूहानियत महसूस होती है, अंदर एक अलग ही पीस मिलता है, आपको लाइफ के बारे में समझ आती है, फिलोसफी समझ में आती है, और इसमें कोई दीन कोई धर्म की बात ही नहीं है, इसमें एक यूनिवर्सल बात है, एक लाइफ की बात है, एक लाइफ की फिलोसफी होती है इन पोइट्रीज में, तो ये बिल्कुल रिलीजन के परे होती है ये चीजें, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है ऐसी चीजें जो फिलोसफिकल चीजें हैं। उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे गुरुओं की संग में रह के और उनका

0: आशीर्वाद पाते पाते मेरा ज़्यादा झुकाव इन्हीं चीज़ों की तरफ रहा है, मैक्सिमम झुकाव तो मेरे गुरुजी है, मेरी गुरु माँ है, मेरे माता पिता, सबका आशीर्वाद उनका है और मैं इस चीज़ को अलग लेवल पे महसूस करती हूँ इन चीज़ों को गाते गाते।
1: जी जी, तो जैसे आपने कहा तो आज के दौर में सूफी संगीत की प्रासंगिकता जो है वो आज भी है, पहले भी रही है और आगे भी रहती रहेगी,
0: रहना चाहिए। बिकॉज मैं अभी यही बोल रही थी कि ये फिलोसफी लाइफ की, ये पोइट्री जो है ये इतनी रिच है, ये असलियत सिखाती है हमको जिंदगी की, इसमें कैसे चलना है। तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा भविष्य हो सकता है अगर वो इस चीज को समझे और इस चीज को आगे, इस परंपरा को आगे चलाएं, ये पोइट्री को गाएं बजाएं और समझे।
1: और कोई यादगार मंच अनुभव आपका?
0: वो तो बहुत सारे हैं, जैसे इवेंट्स में मैं शोज करती रही हूँ काफी सारे, तो पंजाबी भी गाया है, तेलुगु गाया, काफी लैंग्वेजेस में गाया है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी फोक मैंने काफी गाया है, फिल्मों में गाया राजस्थानी, इवन काफी सारे मराठी में भी गाया है, तो संस्कृत में गाया है, तो वो सब श्लोक्स वगैरह और दुर्गा कवच वगैरह मैंने किया था, तो वो तो चलता रहा है, कमर्शियल काम तो चलते रहे हैं, बट ये है कि पंजाबी में मैंने गाया है। जी,
1: तो आप एक पंजाबी कुछ हमारे श्रोताओं के लिए करें?
0: जरूर, क्योंकि मैं आज हरियाणा में हूँ तो यहाँ के जो श्रोता है उनके लिए मैं एक छोटा सा, ये भी मेरा फेवरेट सूफी गाना है
1: जी,
0: नुसरत फतेह अली जी का है
1: जी,
0: क्योंकि मैं इन सारे लेजेंड्स को सुनती हूँ, उनसे सीखती हूँ, जितने भी सारे हमारे मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं रोज ही सीखती हूँ कुछ ना कुछ, तो ये एक मेरा फेवरेट सूफी गाना है।
1: Please.

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। कार्यक्रम चल रहा है गुफ्तगू, और आज हम हमारे देश की और विश्व प्रसिद्ध गायिका से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ है श्रीमती नीरजा पंडित जी, जो मुंबई से खासकर हमारे अंबाला के श्रोताओं के लिए इस समय स्टूडियो में है और बात कर रही है। नीरजा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के समय में संगीत में जो बदलाव आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, संगीत ही नहीं, हमारी जिंदगियों में भी बदलाव तो आता ही है
0: जी।
1: और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हर चीज में बदलाव आता ही है, तो हमारी जिंदगियों में भी बदलाव आया है। तो जैसे हमारे संगीत को लेके मैं बात करूंगी, काफी कुछ चेंजेस आ गई, बिकॉज जो जनरेशन अभी बड़ी हो रही है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में है, म्यूजिक के फील्ड में है या एक्टिंग के फील्ड, किसी भी फील्ड में है, तो बदलाव तो आना ही है, मगर वो बदलाव भी अच्छे ढंग से आए तो बहुत अच्छा है,
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: करेक्ट, हाँ जी, हाँ जी। तो उस बदलाव को हमको देखना है, सुपरवाइज करना है। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमारा क्रिएटिव वर्क है कुछ, या जैसे मेरे म्यूजिक को लेके मैं बात करूंगी कि जब कुछ नया गाना रिकॉर्ड होता है, जैसे अभी सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ संगीतकारों में से हैं
0: जी।
1: तो उनके साथ कश्मीरी फोक म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, अपने मर्चेंट रिकॉर्ड्स उनकी म्यूजिक कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक कंपनीज, उसमें कश्मीरी म्यूजिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो ओरिजिनल म्यूजिक भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका भूमि एक एल्बम आता है हर साल
0: जी।
1: उसमें वो 10 गाने रखते हैं, और वो अलग अलग रीजन्स को लेके
0: बनाते
1: हैं, अलग अलग भाषाओं में भी होता है, और फिर क्लासिकल बेस्ड, डिवोशनल, हर तरह का गाना वो रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज करते हैं। तो कश्मीरी फोक म्यूजिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा कहना ये है कि वो मॉडर्न स्टाइल भी है, और आज की यूथ जो है, जो उसको लाइक करे, उसके हिसाब से भी बना है। बट एट द सेम टाइम कश्मीरी गाना उन्होंने लिया है, जो मैंने अभी गाया आपके लिए, नाज़नीन यार मैं ये मुलाकात, ये पॉपुलर गाना रहा है कश्मीर का, ये सब जानते हैं ये गाना, तो काफी पुराना ट्रेडिशनल गाना रहा है, तो इसको उन्होंने ले लिया और कश्मीर से सिंगर को बुला के, एंड देन एक यंग बडिंग आर्टिस्ट राज पंडित, उसको लिया उन्होंने, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ये गाना बन गया। जब गाना बना तो शुरुआत भी वैसी हुई, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसका ग्राफ ऐसा बन गया गाने का कि गाना एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा गाने में, पर वो बनाने का जो तरीका था वो प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से, वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के हिसाब से बना है पूरा, बिकॉज वो रीजनल लोगों के लिए ही नहीं था, वो ग्लोबल लेवल पे वो भूमि एल्बम आता है
0: जी।
1: तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है वो चीज, पूरे ग्लोब में पहुंचती है वो चीज, जो उनका वो प्लेटफॉर्म है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज प्रोडक्शन है उसकी, तो वैल्यू उसकी, तो उसमें वो गाना उन्होंने जब बनाया तो उसको इतना सुंदर तरीके से उसको एलोबरेट किया है म्यूजिकली, म्यूजिक ट्रीटमेंट जो उसमें है, आप सुनेंगे, आपने सुना भी होगा
0: जी।
1: तो वो लगता नहीं है कहीं दूर दूर से कि वो गाना खराब हुआ है या डिस्ट्रॉट हुआ है, हमारी भाषा को कुछ उधर उधर किया है, नहीं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से उसको उन्होंने बनाया है, प्रेजेंट किया है। तो वैसे ही मैं चाहूंगी कि एक खूबसूरती के साथ अगर हम काम करें, आज की जनरेशन जो चेंजेस तो ला रहे हैं, लानी भी पड़ेगी, बिकॉज उनकी सोच अब डिफरेंट है
0: जी।
1: वो होनी लाजमी है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए या हमको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बैलेंस होके करें, और उसमें बेसिक जब आप रखते हो साथ में, बेस जो हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, क्लासिकल बेस म्यूजिक है, अगर वो साथ में चलता रहे और उसको उसी ढंग से पेश किया जाए और नयापन भी रहे, ताकि दोनों जनरेशन, चाहे वो पहली जनरेशन हो या आगे की जनरेशन, अभी की जनरेशन हो, सब कोई उसको पसंद करे, तो वो एक बहुत अच्छा चेंज है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: आपने अभी भूमि एल्बम की बात की और आपने राज पंडित जी की बात की, आपके सुपुत्र हैं वो, संगीत के साथ जुड़े, एक माँ जब अपने बेटे को इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखती है तो वो क्या सोचती है?
1: मैं तो, वो हमारा तो यही रहा है कि बस उसने अडॉप्ट किया म्यूजिक को, बचपन से वो सीखता रहा। पहले वो तबले से शुरू किया, बाद में की पियानो से शुरू किया, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वो सिंगिंग तो कर ही रहा था, सीख ही रहा था, तो गुरुओं से सीखना शुरू किया। एंड देन इनके साथ संपर्क किया, संगी सलीम सुलेमान जी, वो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, तो वो इसी माहौल में बढ़ता रहा। और मुझे कभी भी वो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो कहीं पहुंचा है हाई लेवल पे, या मुझे तो ऐसा लगता है बस अभी शुरुआत है, आगे बढ़ता रहे और यही कोशिश रहती है कि अच्छा काम करे, आगे बढ़ते रहे, आशीर्वाद रहे सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहे। मेरी तो यही रहती है थिंकिंग, मैं कभी भी वो सोचती नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मेरा बेटा कहीं पहुंचा है, बस ये है कि यू फील प्राउड। प्राउड तो होता है, प्राउड इन नॉट इन दैट सेंस कि अब इसने फतेह पा लिया है तो फिर अब बस खत्म, इतना ही है। शुरुआत अच्छी है, वो बस ब्लेसिंग है और उसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है। बिकॉज जब आप संगीत के इसमें जगत में जाते हैं, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जीना पड़ता है, उसी रंग में जीना पड़ता है, आपको काफी सारी चीजों का कंप्रोमाइज करके आपको उसी लय में रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज अचीव होती है।
0: यानी
1: तो बस कोशिश जारी है, यही
0: यानी कि त्याग, समर्पण और निरंतर काम करना बहुत जरूरी है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आज के युवाओं को
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगे जो खास करके संगीत और गायन क्षेत्र में है?
1: बस यही है जो मैंने कहा कि अगर किसी को करना है, म्यूजिक में ही जाना है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, एंड देन मेहनत, हार्ड वर्क और सीखना। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो एक अच्छे गुरु से आपको मिल सकती है
0: जी।
1: अच्छे गुरुओं के साथ उठना बैठना सीखना, तब आप इसको अचीव कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो गुरु ने सिखाया उस पे चलना, उस पे अमल करना, उसके साथ टच में रहना। मैंने अभी कहा कि जीना पड़ता है, तो संगीत को एक जीने की बात है, तो आपको बहुत उसमें समर्पण भाव से करना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: एक कलाकार के लिए विनम्र होना कितना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कला का हो?
1: बहुत जरूरी है, वही तो चीज है, ऊपर वाला ही देता है ना जो हमको देता है
0: जी।
1: हमको कहीं, हम खुद से नहीं क्रिएट कर रहे हैं कुछ, जो भी हमारे, जैसे मैं गा रही हूँ तो मुझे अगर गला कुछ चल रहा है तो वो ऊपर वाला ही चला रहा है ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जब वो चाहेगा तो वो गवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं गवाएगा, कुछ भी मैं करूँ। तो जब तक आप उसके शरण में नहीं हो, समर्पण नहीं हो भगवान के, आप जिसको मानते हो उनके इसमें सरेंडर भाव में नहीं हो, तो तब तक नहीं होता है कुछ, तो बहुत जरूरी है।
0: अब हम बात करते हैं बेटियों की। हमारे समाज की नींव है बेटी, जब वो बाबुल का घर छोड़ अपने पिया के घर जाती है। इसके संदर्भ में आपने अपनी एक सीरीज साजे कश्मीर में एक गीत गाया है
1: जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप वो सुनाएं और फिर हम इस कार्यक्रम का अगले सेक्शन में समापन करेंगे।
1: जी जी, ये एक बहुत ही सुंदर रचना है, नजीर दास जी कश्मीर के बहुत वरिष्ठ पोएट्स में से रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो जब मैंने इसके लिरिक्स सुने, किसी से मैंने सुने थे और मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और इसके कंपोजिशन पंडित भजन सोपुरी जी की है। फोक बेस्ड कंपोजिशन है, बहुत पॉपुलर कंपोजिशन है पंडित भजन सोपुरी जी की है।

0: निर्जा जी, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप आज यहाँ से जाएं और आप जाने की जिद ना करें, पर समय जो है वो हमें इजाजत नहीं देता है। और आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा कि आज आप पहली बार FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आए, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
1: मुझे तो फखर महसूस हो रहा है, मैं सच्ची बोलती हूँ, बिकॉज कश्मीर से निकल के जिस जद्दोजहद से गुजर के आपने ये सेटअप बनाया है और अपना नाम कमाया है आपके काम में भी, और आपने इस क्रिएटिव फील्ड को यहाँ पे इस जगह पे अननोन जगह जो थी आपके लिए, बट ऑब्वियसली आपको बहुत सहायता भी मिली होगी जो यहाँ पे आपके लोकल्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और गुरुओं का भी आपको संग मिला होगा, आशीर्वाद मिला होगा, तब जाके आपने ये सेटअप यहाँ पे डाला है और आपने शुरू किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो बम्बई में बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है कि वितस्ता रेडियो, वितस्ता नाम जो रखा है आपने, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ
0: जी।
1: वितस्ता बहुत ही एक प्रेशियस और बहुत ही एक ऐसा नाम है जो हमारे खून में बहता है
0: जी।
1: तो वो नाम से आपने रेडियो का शुरुआत की और चल रहा है इतने अच्छे लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे, मैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ आके जो यहाँ की वाइब्रेशन है, लिटरली मुझे लगा मैं किसी मंदिर में अंदर आ गई हूँ, और आपका वो जो ऑरा है इस स्टूडियो का, वाइब्रेशन जबरदस्त पावरफुल, और क्योंकि आप खुद प्योर हो, आप खुद सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर आर्ट, आप खुद एक आर्टिस्ट हो, तो आपको पता है ये आर्ट क्या चीज है। आपका पैशन और आपका डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो आशीर्वाद है, जो आपके शब्द है, इनको हम संजो के रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस सफर पर हम चले हैं आखिरी सांस तक इस सफर को जारी रखेंगे। और अम्बाला के जनता के लिए हम पिछले 36 वर्षों से जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहेगा। निर्जा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और मैं यहाँ बैठ के आपसे कुछ बातें कर पाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
0: थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान थे कश्मीरी फोक, सूफी, गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती निर्जा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने, रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 23, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस IPSRC। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया RJ किडनी ने। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे खास रेडियो शो हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं हूं आपकी अपनी लक्ष्मी, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती है एक ऐसा शो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामान्य सीनियर सिटीजंस के लिए समर्पित है। और आज भी मेरे साथ है मेरे प्यारे दादाजी। हमारे शो की शान जीवन के अनुभवों से भरे, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ठहाकों की बरसात करने वाले और हमें जिंदगी की असली सीख देने वाले मेरे अपने भारत दादाजी। चलिए पहले उनसे एक प्यार भरा नमस्कार करवा लेते हैं।
0: अरे वाह लक्ष्मी, इतनी तारीफ कर दी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। चलो पहले मैं भी अपने सभी प्यारे श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, नौजवानों और मेरे हम उम्र बुजुर्ग दोस्तों, नमस्कार। ये शो सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि एक प्रयास है, एक पहल है, जिससे हम सभी ये समझ सकें कि बुजुर्ग होना कोई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल खजाना है। हमारी जिंदगी के इतने सालों का अनुभव, हमारी कहानियां, हमारे किस्से, यही तो हमारी असली पूंजी है। और इसी पूंजी को संवारने, संजोने और आगे बढ़ाने के लिए ये शो बना है।
1: बिल्कुल दादाजी, और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों के जीवन की ओर भी बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस IPSRC। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है।
0: अरे लक्ष्मी, नाम सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई नया पकवान हो, लेकिन प्यारे दोस्तों ये सच में एक बेहतरीन पहल है। हमारे समाज में बुजुर्गों के लिए जितना सम्मान होना चाहिए उतनी ही सुविधाएं भी होनी चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल दादाजी, हमारे बुजुर्गों की जरूरतें और उनकी देखभाल एक बहुत ही जरूरी विषय है। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की ताकि बुजुर्गों को हर तरह की सहायता मिल सके, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, सामाजिक सुरक्षा से, आर्थिक मदद से या फिर उनके मनोरंजन से।
0: अरे लक्ष्मी, यही नहीं, इस योजना के तहत बुजुर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सके। यानी कि सरकार ने सोचा बुजुर्गों को सिर्फ सम्मान नहीं, सुविधाएं भी मिल जानी चाहिए, और फिर ये योजना बनाई गई।
1: वाह दादाजी, तो दोस्तों आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही बात करेंगे कि ये हमारे बुजुर्गों के जीवन को कैसे आसान बना रही है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे बहुत कुछ खास आने वाला है।
2: हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधा युक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटके हैं स्वास्थ्य सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धा आश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
0: लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है एक बुजुर्ग रामनाथ जी की, जो कभी अकेलेपन और उदासी में डूबे हुए थे, लेकिन सरकार की एक शानदार योजना ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। ये योजना थी इंटेग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस, यानी IPSRC।
1: वाह दादाजी, सुनकर ही दिल में एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये योजना रामनाथ जी के जीवन में कैसे बदलाव लाई। आप जल्दी से शुरू कीजिए।
0: रामनाथ जी 72 साल के हैं। वो एक बेहद मेहनती और जिंदा दिल इंसान थे। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने खूब मेहनत की थी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। कुछ साल पहले उनकी जीवन संगनी, उनकी अर्धांगनी, उनका साया यानी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद उनकी जिंदगी से जैसे सारे रंग चले गए। पहले जहां घर में हंसी ठिठोली, बातचीत और प्यार भरे पल होते थे, अब वही घर सूना और वीरान लगने लगा। उनके बेटे बेटी, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, अब अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जा चुके थे। अब वे कभी कभी वीडियो कॉल कर लेते थे, त्योहारों पर तोहफे भेज देते थे, लेकिन वो स्नेह, वो अपनापन जो किसी को पास बिठाकर बात करने से मिलता है, वो कहाँ से लाते। सुबह की चाय अब पहले जैसी मीठी नहीं लगती थी। नाश्ते के मेज पर अब कोई बैठकर हल्की फुल्की गपशप करने वाला नहीं था। बस अखबार के पन्ने पलटते जाते और दिल भारी हो जाता। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, है ना लक्ष्मी?
1: बिल्कुल दादाजी, कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि बुजुर्गों का अकेलापन कितना दर्दनाक हो सकता है।
0: बिल्कुल, और यही अकेलापन धीरे धीरे रामनाथ जी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वो सुबह उठते, मंदिर जाते, थोड़ा टहलते और फिर घर लौटकर दिन भर बस टीवी देखते रहते। शाम होते ही अकेलापन और बढ़ जाता। ऐसे में उनके चेहरे की हंसी भी जैसे कहीं खो गई थी। लेकिन फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। रामनाथ जी के पड़ोसी शर्मा जी, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे, उनसे मिलने आए। उन्होंने रामनाथ जी को बताया कि सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, IPSRC, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बनाई गई है जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इसके तहत जगह जगह सीनियर सिटीजन के लिए डे केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां बुजुर्ग एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपने पसंद की गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। रामनाथ जी ने पहले तो साफ मना कर दिया। बोले, अरे भाई, इस उम्र में जाकर क्या करूंगा, अब तो बस भगवान का नाम लेने का समय आ गया है। लेकिन शर्मा जी ने कहा, अरे रामनाथ जी, भगवान तो सबकी देखभाल करते ही हैं, लेकिन हम खुद भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। कम से कम एक बार तो चलकर देखिए। काफी मनाने के बाद रामनाथ जी तैयार हो गए। चलो भाई, एक बार देखने में क्या जाता है, उन्होंने सोचा और अगले दिन शर्मा जी के साथ सीनियर डे केयर सेंटर पहुंच गए। अब लक्ष्मी, यहाँ जो हुआ वो एकदम फिल्मी था।
1: अरे वाह दादाजी, फिर क्या हुआ?
0: जैसे ही रामनाथ जी सेंटर में घुसे, उनके कदम थम गए, उनकी आंखें नम हो गई। एक ऐसा माहौल था जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था। चारों ओर उनकी उम्र के लोग थे, कुछ लोग गप्पे मार रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे, कोई संगीत सुन रहा था तो कोई योग कर रहा था। वहां एक बड़ा सा हॉल था जहां बुजुर्गों के लिए तमाम सुविधाएं थी, लाइब्रेरी थी जहां वे किताबें पढ़ सकते थे, एक आर्ट सेक्शन था जहां लोग पेंटिंग बना रहे थे, संगीत कक्ष था जहां कोई हारमोनियम बजा रहा था तो कोई गा रहा था। रामनाथ जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह भी हो सकती है। धीरे धीरे वो भी उस माहौल में घुलने लगे। पहले वे सिर्फ कुछ देर बैठते और बाकी लोगों को देखते रहते, फिर धीरे धीरे उनसे बातें करने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो रोज सेंटर जाने लगे, नए दोस्त बने, हंसी मजाक होने लगा। रामनाथ जी को हमेशा से गाने का शौक था, लेकिन सालों से उन्होंने गाना बंद कर दिया था। एक दिन वहां के आयोजकों ने उनसे आग्रह किया कि वो गाना गाएं। पहले तो उन्होंने झिझक दिखाई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पुरानी आदत को फिर जिंदा किया और क्या गाया उन्होंने लक्ष्मी। उनकी आवाज सुनकर वहीं मौजूद सभी बुजुर्गों ने तालियां बजाई। उस दिन के बाद से रामनाथ जी सेंटर की म्यूजिक क्लास का हिस्सा बन गए। अब वे गाने गाते, कभी कभी कविता भी सुनाते। उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया था।
1: ओह दादाजी, ये तो सचमुच में बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी है। अकेलेपन में जी रहे रामनाथ जी को एक नया परिवार मिल गया। IPSRC योजना सच में हमारे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
0: बिल्कुल लक्ष्मी, ये योजना सिर्फ रामनाथ जी की जिंदगी में ही नहीं बल्कि हजारों और बुजुर्गों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। ये उन्हें एक नई उम्मीद, नया जोश और जीने की नई वजह दे रही है।
1: तो दोस्तों, यही है IPSRC का जादू। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए एक नया परिवार, एक नई दुनिया है।

0: दादाजी, आपने हमेशा कहा है कि ज्ञान का विस्तार करने से ही हम समझदार बनते हैं। आज मैं आपसे IPSRC योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। ये योजना आखिर है क्या और इससे हमारे बुजुर्गों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है?
1: बिल्कुल बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। IPSRC योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक विशेष पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है। जैसे तुम बच्चों के लिए स्कूल और खेल के मैदान जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे बुजुर्गों के लिए भी एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां वे सुरक्षित, स्वस्थ और सामाजिक रूप से सक्रिय रह सकें। अब जरा सोचो, अगर दादाजी और दादी को उनके मनपसंद दोस्त मिले, समय बिताने के लिए एक अच्छा स्थान हो, कोई उनकी सेहत का ध्यान रखे और अगर कोई परेशानी हो तो हल भी निकाल दे, तो कैसा रहेगा?
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दादाजी, ये योजना बुजुर्गों के लिए क्या क्या सुविधाएं देती है?
1: अच्छा सवाल है। देखो बेटा, IPSRC योजना के तहत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती है जो हमारे बुजुर्गों की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है। चलो मैं तुम्हें एक एक कर बताता हूँ। पहला, सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर। बुजुर्गों के लिए ये एक ऐसा स्थान है जहाँ वे दिन भर अच्छा समय बिता सकते हैं। ये किसी भी बच्चे के प्ले स्कूल जैसा है, बस अंतर इतना है कि यहाँ खेलने की जगह, हंसी मजाक, ध्यान, योग, किताबें पढ़ना और अपने हम उम्र लोगों के साथ गप्पे लड़ाने का आनंद मिलता है। यहाँ बुजुर्ग विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि संगीत और नृत्य कार्यशालाएं, कहानी और कविता लेखन सत्र, बोर्ड गेम्स और पहेलियां, बागवानी और पेंटिंग, छोटे छोटे योग और व्यायाम सत्र ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अब बताओ, ये तो मजेदार है ना?
0: बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि आप भी वहाँ जाना पसंद करेंगे दादाजी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो तुम्हारे साथ खेलकर ही मुझे खुशी मिलती है और खुश रहता हूँ। अच्छा, अब आगे सुनो। नंबर दो, हेल्थ केयर सुविधाएं। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस योजना में कई स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है, जैसे मुफ्त मेडिकल चेकअप ताकि समय समय पर उनका स्वास्थ्य सही बना रहे, टेलीमेडिसिन सेवाएं जहां डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए परामर्श लिया जा सकता है, मोबाइल हेल्थ वैन जो उन बुजुर्गों तक पहुंचती है जो अस्पताल जाने में असमर्थ होते हैं, निशुल्क दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की सहायता।
0: अरे वाह, बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखती है ये योजना।
1: हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य का भी। नंबर तीन, मानसिक और सामाजिक सहयोग। अब देखो, बुजुर्गों को सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अकेलेपन और डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्याएं होती है, इसके लिए इस योजना में कुछ खास कदम उठाए गए हैं। परामर्श सेवाएं जहां बुजुर्गों की भावनात्मक स्थिति को समझकर उन्हें उचित सलाह दी जाती है, सामूहिक गतिविधियां जहां वे अपने साथियों से मिलकर नए दोस्त बना सकते हैं, मनोवैज्ञानिक सहायता जिससे वे अपनी परेशानियों को खुलकर साझा कर सकें।
0: इतनी सारी सुविधाएं, आप अभी और बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लिए।
2: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। सीआरए द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
0: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर, हेल्थ केयर सुविधाएं, मानसिक और सामाजिक सहयोग के बारे में दादाजी आपको बता चुके हैं।
1: अब आगे और सुविधाओं के बारे में बताता हूँ। नंबर 4, वित्तीय सहायता। अक्सर बुजुर्गों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए इस योजना में पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर रह सके। कानूनी परामर्श दिया जाता है जिससे वे अपनी संपत्ति और अधिकारों को सुरक्षित रख सके। जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। नंबर 5, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब तुम सोच रही होगी कि बुजुर्गों को नए कौशल सीखने की क्या जरूरत, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग हमेशा से कविता लिखना चाहता था या कोई नया हुनर सीखना चाहता था, तो उसके लिए ये एक शानदार अवसर है। यहाँ बुजुर्गों को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, संगीत और अन्य नई चीजें सीखने का मौका दिया जाता है। वे ऑनलाइन काम भी सीख सकते हैं और अपनी कला या ज्ञान को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। नंबर 6, अभिभावक हेल्पलाइन 14567। अब ये सुविधा तो किसी सुपर हीरो से कम नहीं, ये एक विशेष हेल्पलाइन है जहां बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कानूनी और भावनात्मक सहायता दी जाती है। यदि उन्हें कोई परिवार में परेशानी हो तो समाधान बताया जाता है। यदि उन्हें धोखाधड़ी या किसी अन्य समस्या का समाधान करना पड़े तो कानूनी सहायता दी जाती है। ये हेल्पलाइन 24/7 उपलब्ध होती है, यानी 24 घंटे उपलब्ध रहती है, ताकि बुजुर्ग कभी भी अकेलापन महसूस ना करे।
0: दादाजी, ये तो कमाल की योजना है। इससे हमारे बुजुर्गों को न सिर्फ अच्छा जीवन मिलेगा बल्कि वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। जब हम बड़े होंगे तो क्या हमारे लिए भी ऐसी कोई योजना होगी?
1: बिल्कुल बेटा, जब तुम बड़ी होंगी

0: कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं, उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दादाजी, आज मेरे मन में दो ऐसी कहानियां घूम रही हैं जो हमारे श्रोताओं के जीवन से जुड़ी हुई है। ये उन बुजुर्गों की कहानियां हैं जो अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन IPSRC योजना ने उनकी परेशानियों को हल कर दिया। बताओ।
2: बिल्कुल बेटा, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ ये सुनने के लिए। बताओ, पहली कहानी कौन सी है?
1: पहली कहानी है सुनीता देवी जी की। उनकी उम्र 68 साल है और वे दिल्ली में रहती है। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह से अकेली हो गई। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। कोई नौकरी में उलझा था तो कोई अपने बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त था। नतीजा ये हुआ कि सुनीता जी पूरे दिन घर में अकेले रहती थी। चार दीवारों के बीच समय काटना कठिन होता जा रहा था। न कोई बात करने वाला, न कोई हंसी मजाक, न कोई ऐसा इंसान जिससे वे अपने दिल की बात कर सके। धीरे धीरे उनका मन बुझने लगा। वो जो भी कभी चहकती थी अब खामोश रहने लगी। पहले जहां वह हर छोटी बड़ी चीजों में खुशी ढूंढ लिया करती थी, अब उन्हीं किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था। टीवी भी बेरंग लगने लगा था और मोबाइल फोन में भी कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। उनका मन बहुत उदास रहने लगा और यही अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन्हें IPSRC योजना के तहत बने सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर के बारे में बताया। अब आप सोच सकते हैं, किसी बुजुर्ग महिला के लिए ये सुनना कि कोई ऐसा सेंटर भी है जहां उनकी उम्र के लोग हो और कोई उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दे, कितना अजीब और अविश्वसनीय लग सकता था। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, क्या सच में ऐसा कोई सेंटर हो सकता है जहां बुजुर्गों की इतनी देखभाल की जाती है, या कोई सपना तो नहीं? लेकिन पड़ोसन ने कहा, अरे सुनीता जी, चलिए एक बार देख ही लेते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो वापस आ जाएंगे।
2: तो फिर क्या उन्होंने जाने का फैसला किया?
1: हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और सेंटर में गई। और जैसे उन्होंने वहाँ कदम रखा, उनकी दुनिया ही बदल गई। चारों तरफ उनकी ही उम्र के लोग थे। कोई हंस हंस कर बातें कर रहा था तो कोई लूडो खेल रहा था, कुछ लोग कैरम खेलते हुए ठहाके लगा रहे थे तो कुछ लोग योग क्लास में बड़े आराम से अपनी सेहत सुधार रहे थे। संगीत कक्षा में हारमोनियम बजाने की धुनें गूंज रही थी और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी फिल्मों के गाने गाए जा रहे थे। ये देखकर सुनीता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वे वहाँ रोज जाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने दोस्त बनाए और फिर वही दोस्त उनका परिवार बन गया। अब वे अपने दिन का इंतजार करने लगी, क्योंकि हर दिन सेंटर में कोई नया मजा होता था। उन्होंने फिर से हंसने की वजह ढूंढ ली और सबसे बड़ी बात, अब वे अकेली नहीं थी।
2: वाह, ये तो सच में दिल छू लेने वाली कहानी है। IPSRC सच में हमारे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब बताओ, दूसरी कहानी कौन सी है?
1: दूसरी कहानी है राजेश्वर बाबू की। अब देखिए ना, बुजुर्गों की समस्याएं केवल अकेलापन तक नहीं सीमित है। कई बार वे आर्थिक समस्याओं से भी जूझते हैं और उन्हें सही समय पर मदद नहीं मिल पाती। राजेश्वर बाबू

0: 77 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया। अब वे अपनी पेंशन के सहारे जीवन बिता रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी पेंशन समय पर नहीं मिल रही थी।
1: अरे, ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। फिर उन्होंने क्या किया?
0: एक उम्र के बाद हर छोटी बड़ी चीज के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना बहुत कठिन हो जाता है। राजेश्वर बाबू को हर महीने बैंक जाना पड़ता था। कई बार बैंक कर्मचारी सही जवाब नहीं देते थे और कई बार कह देते थे कि सिस्टम में दिक्कत है, कुछ दिन बाद आइए। बेचारे राजेश्वर बाबू परेशान हो गए थे। उनका गुजारा इसी पेंशन से होता था और जब समय पर पैसा नहीं आता था तो बहुत मुश्किलें हो जाती थी। फिर किसी ने उन्हें IPSRC हेल्पलाइन 14567 के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत वहां कॉल किया और अपनी समस्या बताई। हेल्पलाइन वालों ने न सिर्फ उन्हें सही जानकारी दी बल्कि सरकारी विभाग में उनकी शिकायत भी दर्ज करवाई। उन्होंने राजेश्वर बाबू को बताया कि आगे से उन्हें बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, उनकी पेंशन सीधे उनके खाते में आएगी। कुछ ही दिनों में उनकी समस्या का समाधान हो गया। अब वे हर महीने समय पर पेंशन पाते हैं और IPSRC योजना को दिल से धन्यवाद देते हैं।
1: ये तो सच में राहत देने वाली खबर है लक्ष्मी। IPSRC सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि ये हमारे बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच है। अकेलापन हो, आर्थिक समस्या हो या कोई और परेशानी, ये योजना हर स्तर पर उनकी मदद कर रही है।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि हमें अपने सभी बुजुर्गों को इस योजना के बारे में बताना चाहिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके और खुशहाल जीवन जी सके। IPSRC का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं का समाधान करना नहीं है बल्कि हमारे बुजुर्गों को एक गरिमापूर्ण और खुशहाल जीवन देना है। तो चलिए इस नेक काम में हम भी अपना योगदान दें और अपने आसपास के बुजुर्गों को इस योजना के बारे में बताकर उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे।
1: सही कहा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में या आपके जानने वालों में कोई बुजुर्ग है जो किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहा है तो उससे IPSRC हेल्पलाइन 14567 के बारे में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वे अकेलापन से जूझ रहे हैं तो IPSRC के सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में जरूर भेजिए, जहां वे नए दोस्त बना सकते हैं और जिंदगी को फिर से खुलकर जी सकते हैं।
2: सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट।
3: That's a super six.
4: बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर।
2: अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर।
4: कैसे कैसे?
2: वो ऐसे, पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रूपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव के बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी केंद्रों और गांव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हेड बनाने का इंतजाम, तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आज का शो सच में बहुत ही खास रहा। हमने सुनीता देवी जी और राजेश्वर बाबू की कहानियों से जाना कि कैसे IPSRC योजना ने उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। अकेलापन, आर्थिक समस्याएं और सामाजिक दूरी जैसी परेशानियां जब हमारे बुजुर्ग को घेर लेती हैं, तब IPSRC उनके लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आता है। ये सच में प्रेरणादायक है कि जब सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।
1: बिल्कुल बेटा, और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हमारे समाज की असली नींव हमारे बुजुर्ग ही हैं। वे सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होते बल्कि उसकी जड़ होते हैं। उनकी मेहनत, अनुभव और आशीर्वाद से ही हमारी जिंदगी में स्थिरता आती है। इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उनकी देखभाल करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य और सौभाग्य है। हम जितना उनका सम्मान करेंगे उतना ही हमारा जीवन भी मूल्यवान बनेगा।
0: बिल्कुल सही कहा दादाजी। और जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं या उन्हें ये लगता है कि उनके पास कोई नहीं है, वे बिल्कुल भी हताश ना हो। IPSRC जैसी योजनाएं सिर्फ सुविधाएं देने के लिए नहीं बल्कि आपको ये एहसास दिलाने के लिए भी है कि आप अकेले नहीं है। ये समाज, ये देश और ये समुदाय आपका परिवार है। जितना हम बुजुर्गों को अपनाएंगे उतना ही ये समाज बेहतर बनेगा।
1: तो दोस्तों, इसी विचार के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन याद रहे अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ आपके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आएंगे। जब तक हम दोबारा मिलें, तब तक अपने परिवार से प्यार करें, अपने बुजुर्गों को समय दें और खुशहाल जीवन जिएं।
0: तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ मिलकर जिंदगी का मजा लीजिए। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेला महसूस कर रहा हो तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। चलिए अब आज विदाई लेते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे एक और शानदार और इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनों के साथ मस्ती में रहे।
1: नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 23, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस IPSRC। इस एपिसोड में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आजय किरनी ने और भरत दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया आरजे किरनी ने और रिकॉर्ड एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा की।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 7। आज का कार्यक्रम आधारित है जाने माने गायक यशुदास पर। प्रस्तुत करेंगे आज किरणी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। सभी दोस्तों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक खास म्यूजिकल सफर यशुदास के गानों के साथ। आपको लेकर जा रहे हैं एक अनोखे संगीत के सफर पर, जहां हम यशुदास के कुछ अनमोल गानों को सुनेंगे और उनकी कहानी को जानेंगे। यशुदास का जन्म 10 जनवरी 1940 में कोचीन केरल में हुआ था। उनके पिता ऑगस्टाइन जोसेफ एक मंजे हुए मंचीय कलाकार एवं गायक थे, जो हर हाल में अपने बड़े बेटे यशुदास को पार्श्व गायक बनाना चाहते थे। यशुदास के पिता जब वे अपने रचनात्मक कैरियर के शीर्ष पर थे, तब कोचीन स्थित उनके घर पर दिन रात दोस्तों और प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहता था, किंतु जब बुरे दिन आए तब बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो मदद को आगे आए। यशुदास का बचपन गरीबी में बीता, पर उन्होंने उस छोटी सी उम्र से अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे और ठान लिया था कि अपने पिता का सपना पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने ताने सुनने पड़े जब एक ईसाई होकर वे कर्नाटक संगीत की दीक्षा लेने गए। एक समय ऐसा भी आया कि वे अपने RLV संगीत एकेडमी की फीस भी बमुश्किल भर पाते थे। ऐसा भी दौर था जब चेन्नई के संगीत निर्देशक उनकी आवाज में दम नहीं पाते थे और EIR त्रिवेंद्रम ने उनकी आवाज को प्रसारण के लायक नहीं समझा। लेकिन जिद के पक्के उस कलाकार ने सब कुछ धैर्य के साथ सहा।

एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर। आदि नारायण शुरू के इस कथन को अपने जीवन का मंत्र मानने वाले यशोदास को पहला मौका मिला 1961 में बनी फिल्म कला पदुकल से। प्रारंभ में उनकी शास्त्रीय अंदाज की सरल गायकी को बहुत सी नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यशोदास ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत प्रेमियों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, भाषा उनकी राह में कभी दीवार नहीं बन सकी।

दक्षिण के सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने के बाद यशोदास ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। फिल्म जय जवान जय किसान के लिए पहली हिंदी गीत गाया, लेकिन पहले रिलीज हुई फिल्म छोटी सी बात उन्होंने 70 के दशक के सबसे मशहूर अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी। इनमें अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर और जितेंद्र शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कई गाने गाए। मलयालम फिल्म संगीत तो यशोदास के जिक्र के बिना अधूरा ही है, पर गौरतलब बात यह है कि उन्होंने हिंदी में भी जितना काम किया कमाल का किया। सलील दा ने उन्हें सबसे पहले फिल्म आनंद महल में काम दिया। ये फिल्म नहीं चली पर गीत मशहूर हुए, जैसे आ आ रे मितवा। फिर मशहूर संगीतकार तथा गीतकार रविंदर जैन के निर्देशन में उन्होंने 1976 में आई सुपरहिट हिंदी फिल्म चित चोर के गीत गाए। इस फिल्म के संगीत ने लोगों के दिलों में यशोदास के लिए एक खास जगह बना दी। चितचोर का गीत गोरी तेरा गाऊं बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, जिसने भी सुना वह यशोदास का दीवाना हो गया। इस गीत की रचना करने वाले रविंदर जैन भी यशोदास की आवाज के मुरीद हो गए। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर उन्हें आंखें मिलेंगी तो वह सबसे पहले यशोदास को देखना चाहेंगे। अपने 50 वर्षों की गायकी करियर में यशोदास ने 14 भाषाओं में 35,000 से भी अधिक गीत गाए।

यशोदास ने जितने भी गाने गाए वह सदाबहार हो गए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दास्य एटन के नाम से जाने जाने वाले यशोदास की कामना थी कि वह मशहूर गुरुवायूर मंदिर में बैठकर कृष्ण स्तुति गाए, लेकिन मंदिर के नियमों के अनुसार उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका। और जब उन्होंने अपने दिल की बात को एक मलयालम गीत के माध्यम से श्रोताओं के सामने रखा, उस सदा को सुनकर हर मलयाली हृदय रो पड़ा।

कर्नाटक संगीत के विशेषज्ञ होने के साथ वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी कुशल है। उन्होंने सुंदर गीतों को प्रस्तुत करने के लिए दोनों कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को मिलाया। उन्होंने अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान रूसी, अरबी, लेटिन और अंग्रेजी गाने भी गाए। 1960 के दशक के मध्य में यशोदास ने प्लेबैक गायन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कॉलीवुड के फिल्मों में गाना शुरू किया और कुछ समय बाद उन्होंने 1970 के दशक के मध्य के दौरान बॉलीवुड में प्लेबैक गायन भी शुरू किया। उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यशोदास ने अपनी संगीत कला का पूरे विश्व में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कर्नाटक शैली में अरबी गीतों को प्रस्तुत किया। वे असंख्य प्रदर्शनों के माध्यम से विदेशों में भारतीय संगीत को बढ़ावा देते रहे। उनके उस अद्भुत प्रयास के लिए उन्हें केरल राज्य के अस्थाना गायिकान का नाम दिया गया है। उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

1970 में उन्होंने केरल के संगीत नाटक अकादमी का नेतृत्व किया, जो अकादमी के इतिहास में पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। डॉक्टर के जे येसुदास और उनकी पत्नी प्रभा वर्तमान में चेन्नई और फ्लोरिडा यूएसए में रहते हैं। सलिल चौधरी को येसुदास को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय दिया जाता है। चौधरी की येसुदास से पहली मुलाकात तब हुई जब उन्हें राम करियात की मलयालम भाषा की फिल्म चेम्मन के लिए संगीत तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि करियात ने चौधरी को क्यों चुना। चेम्मन के बाद चौधरी मलयालम सिनेमा में भी एक जाना माना नाम बन गया। येसुदास ने चौधरी पर गहरी छाप छोड़ी। एक साक्षात्कार में येसुदास याद करते हैं कि ये चौधरी ही थे जिन्होंने पूछा था, क्या येसुदास हिंदी में गाने में रुचि लेंगे। येसुदास ने साक्षात्कारकर्ता से कहा, कौन मना करेगा। लगभग एक दशक लग गया, लेकिन चौधरी ने सुनिश्चित किया कि येसुदास की आवाज बॉम्बे तक पहुंचे।

जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज हम बात कर रहे हैं गायक यशोदास जी के बारे में। जाने मन जाने मन के बाद बासु चटर्जी ने यशोदास को अपनी अगली फिल्म चितचोर में एक और गाना ऑफर किया, जो कि आइकनिक गोरी तेरा गाऊं बड़ा प्यारा। अनिरुद्ध भट्टाचार्य की किताब के अनुसार फिल्म के निर्माता ताराचंद ने यशोदास को गाते हुए सुना और कहा, आप उन्हें सभी गानों के लिए क्यों नहीं लेते। चितचोर में यशोदास के चारों गीत अद्वितीय हैं, जो उनकी प्रतिभा और विविधता को दर्शाते।

84 साल की उम्र में यशोदास के लिए हजारों पूर्णिमाएं नहीं बल्कि 72 मेलकाटा राग और उनके अनगिनत गुण संगीत स्वर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित करने के बाद वह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस प्रयास से उन्हें इस विशाल सागर का सिर्फ एक मुट्ठी भर हिस्सा ही मिला है। वे जीवन भर संगीत के छात्र रहे हैं और इस अंतहीन खोज के आगे समय भी सम्मान से खड़ा है। डलास में अपने घर पर यशोदास अपनी पत्नी प्रभा के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और संगीत सीखना जारी रखते हैं। थारंगनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से वे अभी भी नियमित अंतराल पर नए गाने जारी करते रहते हैं। यशोदास को कई सम्मान और पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार 7 बार दिए गए। आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया। कर्नाटक राज्य फिल्म अवार्ड 3 बार दिया गया। केरल राज्य फिल्म अवार्ड 26 बार दिया गया। तमिलनाडु राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया।

दोस्तों, आज हमने सुनी एक ऐसे महान गायक की कहानी जिन्होंने अपनी सुंदर आवाज से हर दिल को जीत लिया। यशोदास जी के गानों ने न सिर्फ हमें मंत्रमुग्ध किया बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध किया। उनकी आवाज में वो जादू है जो कभी भी हमें प्रेरणा देना बंद नहीं करती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ वक्त बिताया और यशोदास जी की यादों और गानों में डूबे रहे। आशा है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए कार्यक्रम में। आप अपना फीडबैक हमें दीजिए 7056413010 पर। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 7। आज का कार्यक्रम आधारित था जाने माने बॉलीवुड गायक यशोदास पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्ता की प्रस्तुति।

राम राम। जहां दूध दही का खाना योआ मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सिखैदे गाना बजाना योआ मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना योआ मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना योआ मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे मा और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकाई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे मा। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सबेरी 7:05 पा और दोपहर नु 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

काश तुम होते हमारे इन बहती हवाओं के संग तैरते, हम दोनों पानियों में पत्थर फेंकते, इस पानी को मैं तुम्हारी हथेली में रख कर ताकि अपना अक्स ढूंढ सकूं और माजी के दर्द को चंद पलों के लिए भुलाने की कोशिश करूं। काश तुम हमारी परछाई बन पाते, मैं पकड़ता और तुम भागते और मैं पकड़ने की कोशिश करता। काश तुम बादल बनते, बरसते और मैं भीग जाता। तुम आकाश के किसी कोने से मुस्कुराते और मुझे इन हवाओं के हवाले करते।

0: रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे
1: चंद अल्फाज इन सांसों को ताजगी बख्शते, तुम्हारी सुरीली आवाज रूह से बात करती, यकायक जिस्म पिघलते। और जन्म होता फिर से हमारा तुम्हारा इस वादी गुलपोश में, यहां दर्द के इन नगमों को हम अलविदा कहते, नई सुबह के साथ ही

खामोशी का एहसास अगर है तो बदलाव लाजमी ही है। अगर वक्त के साथ साथ हम चलें तो जाहिर है ये आकाश भी हमारी रहनुमाई करेगा। जमीन के हर जुज में तड़प है, कसक है और बेचैनी तारी रहती है। हम जी या मरे, जमीन और आसमान को इससे क्या लेना? सिर्फ यहां की धाराओं में बहना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, यहां कुछ भी हमारा नहीं, खाली आए और खाली जाएंगे, शायद कुदरत का यही दस्तूर है।

यहां आज इन प्यार की बरसातों में कोई तो आए पास बैठे, शायद फिर से ये मन बहल जाए। पिछली रात के पिछले पहर में जब ख्वाब में तुम भीगते हुए आए, रुक गई बारिश, घने बादलों में जैसे चांद दुल्हे का लिबास पहने सितारों की बारात लेकर तुम्हारी चौखट पर दस्तक दे रहा हो, जैसे कह रहा हो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अपनी पनाहों में संभाल के रखेंगे। तेरा शुक्रिया, आते तो हो ख्वाब में ही

लम्हे हमारे अपने थे जब चांदनी रातों में हम सितारों की दूरियों को नाप लिया करते थे। इनका दर्द समझने की कोशिश करते थे। इन्हें तुम अपने आंचल में छिपा लिया करते थे और इनसे हम कलाम हुआ करते थे। इन चांदनी रातों में हम दोनों इन सितारों को निहारते रहते थे। हमें इनकी खामोशी का एहसास भी हुआ करता था और इनकी सिसकियां हम महसूस करते थे, पर अब ये ख्वाब की तरह है जो हकीकत से कौन सो दूर है।

कभी कभी अनजाने हादिसात यूं घेर लेते हैं कि अपने आप को अलग करना नामुमकिन सा लगता है। अचानक कोई आकर दस्तक देकर चला जाता है, जज्बात को ठेस पहुंचाकर। उनके दामन में पनाह लेने की ख्वाहिश, दूर तक साथ साथ चलने की उम्मीद तो जग जाती है, पर पल भर में मिट जाती है यूं ही बेवजह। और हां, बस यही मान के चलना पड़ता है कि सपने कभी सच नहीं होते हैं, सपने तो सपने होते हैं।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी।
1: आज दिन भर कई खूबसूरत रंग आपके संग गुजरे और इन्हीं रंगों के बीच रेडियो विदस्ता हमेशा से ही आप सभी को विभिन्न संस्कृतियों से अटूट धागे से जोड़े रखने का प्रयास करता आया है। इसी कड़ी में आज दोपहर 2 बजे आपने नीरजा पंडित जी के साथ रिकॉर्ड किया गया हमारा विशेष कार्यक्रम सुना। उम्मीद है सुरों और बातचीत का ये सफ़र आपके दिल को ज़रूर छू गया होगा। आने वाले दिनों में भी हम आपके लिए ऐसा ही खास, अर्थपूर्ण और विविधता से भरा कार्यक्रम लाते रहेंगे। कुछ पंक्तियाँ आप सबके नाम। दिन भर के इस प्यारे सफर को अब यहीं विराम देते हैं, खूबसूरत लम्हों और यादों को छाओं में विश्राम देते हैं। रातों की खामोशी में मिले सुकून भरे मीठे ख्वाब आपके इसी दुआ के साथ आज की इस आखिरी रात का सलाम देते हैं। आज के कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। दिन भर बातों, विचारों और अलग अलग कार्यक्रमों के इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का ये पूरा दिन आपके लिए बेहद खास रहा होगा। अब दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून के कुछ पल बिताने का समय है। कल सुबह ठीक 5:58 पर फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, एक नए सवेरे और एक बेहतरीन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहे, अपनों और अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।